अष्टमुखिया है आठवें गुरु बलवीरा बल वाले। जिन पहुंच देहली तजियो शरीरा, भाई गुरुदास जी कह रहे हैं हर कृष्ण पायो। गुरु हर कृष्ण साहब आठवें गुरु बड़े बल वाले सन। जिन पहुंच देहली तजियो शरीरा, जिन्हां ने दिल्ली पहुंच के अपना शरीर त्यागया, बाल रूप धरियो स्वांग रचाए। बाल रूप विच जिन्हां ने कई तरह के कौतुक करके अते दुखियां दे दुख दूर करके दुखियां नु सुख दिता, बाल रूप धरियो स्वांग रचाए, तब सहजे तन को छोड़ सिधाए। ए गुरु दा कौतक है कि जिन्हां ने छोटी उम्र विच ही दुखियां दे दुख दूर करके अपना शरीर त्यागया। आओ गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज के जीवन बारे

तिसे मुख नहीं मोड़ियो जैसी आ गया कीनी ठाकुर तिसे मुख नहीं मोड़ियो सहज आनंद रखियो गृह पीतर उठ

सलल निवास जैसे मीन की ना कटे रुच, सलल निवास जैसे मीन की ना कटे रुच, दीपक परदास कटे प्रीत ना पतंग की उस सुभास, जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़ते आकाश, आस कटे ना विहंग की कटाकन को।

जिन्हां ने मेरा प्रभु पाया है, मैं उदी मिंत करां, उदा तरला करां, उदे चरण पकड़ां, भई मैनू भी दस केड़े रस्ते तुरां ते मेरा मालक मैं

चल वह रहा सी ते दर्शन करन वाला दर्शना दी तांग विच शब्द पढ़दा सी ते उदो दर्शन देन वाला आनंदपुर साहब बैठा सी ते हुण जदो दर्शन देन वाला दरिया दे कंडे ते आ गया है ते हुण दर्शन करन वाला आनंदपुर साहब पहुंच गया। ओ आनंदपुर साहब सतगुरां दे दरबार विच शरीर ता बेड़ी विच है पर अज सुरत पहुंच गई आनंदपुर साहब सतगुरां दे दरबार दी सेवा करनी है। सतगुरां ने तीसरी आवाज दिती ओ सैदिया चंगा प्यार करदे चंगा याद करदे हुण बेड़ी कंडे भी नहीं लाउंदा। जदों सतगुरां ने दिव दृष्टि

आओ एक बारी ना तुकानु प्यार ना पढ़ लिये आओ रह ना सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वहे वह चले जियो कोई रचना वांझी ना रवे आओ एक बारी ना तुकानु सारे पढ़ लिये।

दर्द को खुशी न आयो। हर नाम छोड़ तू जय लगे, हर नाम छोड़ तू जय लगे, तिनके

तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावे तिलका मान सुनिया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुती माहो कवन जिथो आकार वेल न पाइया पंडती जे होवे लेख पुराण वक्त न पायो कादी।

आखह पड़े करह बखियाण। आखह बरमे आखह इंद आखह गोपी तय गोबिंद आखह ईसर आखह सिद्ध आखह केते कीते बुद्ध।

गावै तुहनो पौन पणी बैसंतर, गावै राजा धर्म दुआरे, गावै चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सला सुवारे, गावै इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले, गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले, गावन रत्नो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे, गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे, से ईत नो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बीचारे, सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेख कीता अपना जीवत सिदी वड्याई, ज्योतिष भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पातशाह साहां पातशाहिब नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अवरा साद, संजोग विजोग दोयकार चलावह लेखे आवह भाग, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फरमान, ओह वेखै ओना नदर न आवै बहुता एहो विडान, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, एक दूजी भौ लख होहे लख होवै लखवीस, लख लख गेड़ा आखियह एक नाम जगदीस, एत राह पत पवड़ियां चढ़िए होए इक्कीस, सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ ठीस, आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण नह जोर, जोर न राजमाल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत, करमी

भाग होआ गुरसंत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर मह पाया, सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हौ कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। तनासरी महला पहला, घर पहला चौप दे इको ओंकार, सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद, जियो डरत है।

अगम गोचर अलख पारा चिंता करो हमारी, जलथल महील भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर छावा तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे।

हैं, निरुक्त स्वरूप हैं, त्रिमुक्त विभूत हैं, प्रभुक्त प्रभा हैं, सुयुगत सुधा हैं, सदैव स्वरूप हैं, अपेदी अनूप हैं, समस्तोपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्तुल सलाम हैं, सदैवल अकाम हैं, निर्बाध स्वरूप

गादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्व भागे सो सर्वा नरागे। त्रिभुगत स्वरूप हैं, छिज हैं, अछूत हैं कि नरकंग प्रणास हैं, पृथ्वीउल प्रवास हैं, निरुक्त प्रभा हैं, सदैवं सदा हैं। विभुगत स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, विभुगत प्रभा हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं। चाचरी छंद अभंग हैं, अनंग हैं, अपेख हैं, अलेख हैं, अपर्म हैं, अकर्म हैं, अनाद हैं, जुगाद हैं, अजय हैं, अभय हैं, अभूत हैं, अतूत हैं, अनाश हैं, उदास हैं, अतंद हैं, अबंध हैं, अभक्त हैं, विरक्त हैं, अनाश हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलिख हैं, अदिख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सो नित हैं, अजात हैं, आजाद हैं। चरपट क्षमता प्रसाद सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता रसावल शंता प्रसाद। नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपूते परमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे। न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं सरीक हैं मितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं। भगवती शंत प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुस्नल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी दहिंद हैं के राज करहिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुस्नल जमाल हैं गनीमुल खराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल शिकन हैं हरासुल फिकन हैं कलंकं प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजल गनीम हैं रजाय करहीम हैं समस्तुल जुबां हैं कि साहिब किरां हैं कि नरकं प्रणास हैं बहिस्तुल निवास हैं कि सर्वल गवन हैं हमेशुल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परम परम ईश हैं समस्तल अदीश हैं अदेशुल अलेख हैं अमेशुल अपेख हैं जमीनुल जमा हैं अमीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं कि जुरत जमाल हैं कि अचलंग प्रकाश हैं कि मित्तो सुबास हैं कि अजब स्वरूप हैं कि मित्तो विभूत हैं कि मित्तो पसा हैं कि आत्म प्रभा हैं कि अचलंग अनंग हैं कि मित्तो अपंग हैं। मद पार शंत प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर पर पंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अनशिज अंग आसन भंग उपमा पार गत मितोदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास तिर तर तुरास अजान वाहो एक सदा हो। ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आज जिना बात अनझंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अनठट अपार आडीठ धर्म अत तीठ कर्म अणबरण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद तब प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्व पास्य है सर्वनास्य है करुणा कर है विसंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप हैं अथपा थप हैं अकृता कृत हैं अमृतामृत हैं अमृतामृत हैं करणाकृत हैं अकृता कृत हैं तरणी तृत हैं अमतेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृता कृत हैं अमृतामृत हैं अजबा कृत हैं अमृतामृत हैं नरनायक हैं खलकायक हैं विसंबर हैं करुणालय हैं निरपनायक हैं सर्वपायक हैं पवपंजन हैं अरगंजन हैं रिपतापन हैं जप जापन हैं आकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कर्ता कर हैं हर्ता हर हैं परमात्म हैं सर्वात्म हैं आत्म बस हैं जस के जस हैं पुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे
नमो राजसं तामसं शांत रूपे नमो परम तत्ं अतत्ं स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अमय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे भुजंग प्रियात छंद नमस्तल परणामे समस्तल परणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे निरकामं विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुधर्मं विभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये श्री मुख वाक पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरो घर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधारक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाय कृपा हूं ते एक रति विनेक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पूप पली विद न्यावत शीस न जात विचारे ते पय तो कहाँ पय पूप तंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजित ढोल मृदंग नगारे गूंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत है हजराज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे विन अंत कौ अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक सिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब ऐसु विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपते एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हलैन हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अवचार है सार की धार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचकन एक सो एक दवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरें जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराध पजौन त्रलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद कदान अनेक स्वयंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत पद से जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के परस हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे बक ध्यान लगायो नात फिरो लिए सात समुन्द्र लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पशाह को शीस निवायो को बुतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो
ਕੋਵ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਿਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋਵ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਚੌਪਈ ਬਹੁਰ ਅਸੁਰ ਕਾ ਕਾਠ ਸਮਾਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਨਾਥਾ ਦੁਤੇ ਬਾਨ ਸੌਂਦੋ ਅਰ ਕਰ ਕਾਠ ਦਯੋ ਅਸਤੁਜ ਨਰ ਨਾਹਰ ਪੁਨਰਾਸ਼ਿਸ਼ ਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ ਪੁਹਪਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਗਨ ਤੇ ਭਈ ਸਭਨ ਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਲੋਗਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੁਸ਼ਟਨ ਦਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ ਖਲ ਭਵਨ ਕੇ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰੇ ਦਾਸ ਜਾਨ ਮੋਹਲੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੁ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੁ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰ ਦੇ ਕਰੀਏ ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰੀਏ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧਿਆਉਂ ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੁਪਮ ਤੇ ਪਾਉਂ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀ ਹੈ ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰੁ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੁਝੇ ਉਬਰੀਏ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਏ ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜੂ ਕਰੀਏ ਹੋ ਰੱਛਾ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹਿ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਬੰਧ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤਰ ਦਸਕੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪ ਧਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਕੀਓ ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂਥੀਓ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ ਆਦਿ ਅੰਤੇ ਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੀਓ ਹਮਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਭ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦੀਓ ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲਮੋ ਬਧ ਕੀਓ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪਰਜਾ ਧਰ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ ਜਾਨਤ ਭੇਦ ਭੇਦ ਅਰਿਆ

रास मेरी मन वणजारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा कहे नानक हर रास मेरी मन होआ वणजारा ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पलै न पाए हर रस पाए पलै पीए हर रस बहुड़ न तृष्णा लागै आए एहो हर रस करमी पाईए सतगुर मिलै जिसाए कहे नानक होर अनरस सब बीसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जीओ पाए जगत दिखाया गुरप्रसादी बुझया ता चलत होआ चलत नदरी आया कहे नानक सृष्टि का मूल रचया जोत राखी ता तू जग मह आया मन चाओ पया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कहे नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो ए शरीरा मेरिया इस जग मह आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कहे नानक एहो शरीर प्रवान होआ जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नेत्रो मेरियो हर तुम मह जो तरी हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया ए बिस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुरप्रसादी बुझया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई कहे नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिले दिब दृष्ट होई ए सरवण हो मेरे साचै सुनने नो पठाए साचै सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मंतन हरिया होआ रसना रस समाणी सच अलख बिडाणी ताकि गत कही न जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वह साचै सुनने नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख कै बाजा पवन वजाया वजाया बाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी एक न दसवा द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाओ नवनिद तिसदा अंत न जाई पाया कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया एहो साचा सोहिला साचै घर गावहो गावो ता सोहिला घर साचै जिथै सदा सच त्यावहे सचो त्यावहे जां तुद भावहे गुरमुख जिना बुझावहे एहो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सोजन पावहे कहे नानक सच सोहिला।

0: प्रभु के सिमरन गर्भ ना बसै,
1: प्रभु के सिमरन दुख चल न सै,
0: प्रभु के सिमरन काल पर हरै,
1: प्रभु के सिमरन दुश्मन तरै,
0: प्रभु सिमरत कछु

और किसे स्थान उते जुल्म दियां हनेरियां चुलियां ने पापां दे बदल छाए ने ओ समय इतिहास दा खूनी पत्रा बंदा गया। समय समय अनुसार अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा अपने वखरे वखरे रंगा राही किसे पीर फकीर जा दरवेश दे जामे विच प्रगट होके सारी कायनात दे दुखां दर्दां दा नाश करन लई आप सहाई हुंदे रहे। दुष्ट दमन दशमेश पिता ने उस समय अवतार तारिया जदों के गरीब मजलूमा दुखियां भी चीखोकार सुन वाला और रक्षा करन वाला धरती उत्ते होर कोई नहीं सी। पिता तो पुत्रा तक सारा सरबंस वतन कौम दे लेखे लाके गुप्त हनेरी रात नू माछी बाड़े दे बिया बान जंगलां विच टीम दा सराणा लाके चोजी प्रीतम लोकां भाणे ता रोड़ा उत्ते सुते हुए सन, पर असल विच दशम पिता सुते हुए नहीं सन। भला कदे औखियां घड़ियां विच वी कदे किसे नू रोड़ा उत्ते नींद आ सकती है? जदों के लुकाई दे दुखां नू किसे ने आप जान बुझ के सीने नाल लाया होवे। कलंगियां वाले दशम पिता उस वेले अखां मीटी शायद इस ख्याल विच मगन सन कि किस तरह जुल्म दियां जड़ां पुट के देश दे गलों गुलामी दा फंदा लाया जाए। लुकाई लई सब कुछ वार के करों बेकर होके जंगलां दा वासी होके रहना फिर सिदक ना हारना कमाल। दुनिया दे इतिहास विच इस तो वड्डी कुर्बानी दी मिसाल

हे परमात्मा मैं तेरे दर दा भिखारी हां मंगता हां आरता मैंने मंगता जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गो मैंने पितमी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।